आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: ओएसटी
1: ओएसटी मिबा मिफहर और मे मिहांस कुरणी इंगिलाबी रोहका वर्गद जजुपात तक गेनेस्ती मशहूर लवेकन ला कासा डेपपेल नोत मणी हेस्टुम फेनिगेंदिया मि लवा हमेकेनी फिल्मी लवे कवरे बोडा मी किनबे कवे फवणी मिनिवंकमा एक्वेरिकमा आदि एकक अनिक कट्टका वा कुर्बानी के रमजकन इटली के मी फोक लवेन सिफको देनी नुकुडा फदा अजुमा कोमे फदा हालते गवेस वफा तेरिकन मे लवा तिबेफ्रुं एमे फुरतमा अडोही स्क्रीनुं कमगवेस नोत फोनुं तकुरार कों अडोही लवे कमगवेस मे लवा मियदिस हिता एमिनवर हम कुलानी कमंग उम्मीद कुरन मि हफ्तागे ओएसटी पिक आदे मणि हेस्टुगे साउंड ट्रैक बेला चाओ मिहाय साबो

0: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Dile hi filmo, film adi series bil ma shogreva ay hun terina genesteni.
2: Balala sa.
3: Nice job, kid.
4: Thanks. Captain. Big fan of Spider-Man.
3: Yeah, we'll talk about it later.
5: Hey, Indraniya. Vare vepadati unnani.
1: Balalan sali film adi series takayku mi faharus fahi baddal kollane.
6: Well, good luck with your journey.
2: Balala sali.
7: Kom haftaa gives bula do men dur fa de jahair repeat buras pat do gere dihai jahair adi hukur do ge mendam bar jahair. हमें कनी नुवदी है के मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएमओ।
8: फिल्म आ म्यूजिक के दुनिया फीनाल में तैयार था।
9: ऐहेंग का मवाड़ में पॉपकॉर्न होता तैयार वे। दिवे एफएम के मुनपुर फिल्म के दायरा के खास शो एम में फस आहार पता का।
8: बॉक्स ऑफिस के एम में हिट फिल्म तक हुए माउलू मात।
10: ये रही महर की रकम, अब आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है।
9: MFO ge trailer taka bala lang emme kamudane series tan adi hafta ge tari
11: years decades each life a faded lesser copy
8: of the kon theater in emme kamuda film to ge ha samanzaruta OST bank handa natta nu leve lavata ka ti befulun ge magbul tariya kaiku nu adi hasikun pa
12: kali sa phone ko bala ah mihir phone
13: ni kam bisnal bala wa fir vejer ti kam huttala ahare miuna ni ichike nubuna
8: MFO ಕೊಮ್ಮೆ ಹಫ್ತಾಯಕು ಹುಕುರದ ಹೋಗೆ ಮೆಂದುರ್ ಫಹು ದೇಚ್ಚ ಹಾಯಿರು
9: ಹಮೇಕಣಿ ನುವದಿ ಹೇಕೆಂ ಮೆಗ ಹೈಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಹೇಫೆಮ್ಮು
14: ಚಂದಾಯಿ ದೇಖಾ ಅಖಾ ಬಾಜು ಮಾ ಹಮರೆ ರಖಾ ಈ ದೇಖ ಕರೆ ಮನುವಾ ತೈಯಾ ಧಕ್ಕಾ
2: ಎಮ್ಮೆ ಫಾಸ್
3: ಮುನಿಯವಸ್ ಫಿದುವಾದುಮ ನುವದಿ ಹೇಕೆಂ ಮೆಗ ಹೈಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಹೇಫೆಮ್ಮ ಟ್ಯೂನ್ ಕುಂದಮ್ಮ

0: चाइल्ड लव के उन तेरे की काकू ये मचाएंगे जवाब अन्ना ते वागो तुम बेर के फंड आनगे तेरे को फंड आने के अरिजीत अंगे
1: अंगे
0: अंगे नित का मुना
1: अंगे का नेहा कक
0: नेहा कक्कर तफा तो टेस्ट है तीनों ने निंगे अरिजीत ते दम वरा मर्डु मैं तेरी नेहा ये गाने इधी कोड़ दो मरांगर इंगा निफार कौन लावे
1: एक और मेरे पास

0: निशा तो बता दो ना बोलने का।
1: सिर्फ ना काफी नहीं है क्या?
2: दिव्य एफएम 91.1 MHz।
3: Guess the dialogue.